0: आप सुनरिक फार्मोन
1: Go ahead, Fawon.
0: Could be transporting the patient to VH.